समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु पंचम।

जय साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे शीश बंडे कर बैसन दीजे बिन सिरस

पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुनांदे सन, लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मर्दानिया चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने,

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिले विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दिती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना जरा प्यार ना सुनना, कहंदे ने

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोए। दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को।

हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समरा।

से पादो नरक न पाईए गुर रखन वाला हेत। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, मन तन प्यास।

गुरु नानक आख्या, गुरु नानक प्रगटिया, राय पोएं दी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में परवरे।

मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगित बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज अज बालक

0: जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मोरू जल लग रहे हैं तुम्हारे को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: यह मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी और दे कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाली आवाज आ रही सी
4: कागो हंस करे।
2: कागो हंस करे। कागो हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोना।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुलाल जो सिर साई नानी सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानी सो सिर की देखाए उन्ने पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
1: साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया रिता।
4: असी असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
1: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
1: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन नूं आई हां संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
1: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरिया करता है तो हो भी चाहिए कि की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना दिन वेले बेड़ी चलाना तो रात लंगर चो ढिड भर के बाहर थे तो सौ जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
1: तन ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिला है और दर ते जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस औगन हारे इस पास सागर तो पार उतारो।

शब्द गुरपीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।

माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेश्वर वड़े भाग देवे परमेश्वर कोट पला।

विस्तारा किवन किन्ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया किन्ही मोन अधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्ही कया मैं कुले वडाई किन्ही कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही भवन

जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो, पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लइए खोए, दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न को।

हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

प्रभ आपना नानक तिस कुर्बान माग सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेरवान। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहावे।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखां नूं पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत की कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता, अपने भले वास्ते। पर जिहड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, वह अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए पहला सतयुग बारे कि सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचो चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा से सलाह की थी सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया

द्वापर युग आया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, आज भी इशनान करन गए। सेवक खलोता है, देख रहे है, अचानक इशनान करदे हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी चुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले ए शब्द उचारे।

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे

कलयुग विच सब तो पहला अकाल पुरख ने सचखंड बुला के आप नाम दा अमृत दा प्याला पियाया। धन गुरु नानक साहब अपनी बाणी विच

सुत कहते ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख न कहते ने अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ

ते जिन्ना ने मांस वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा।

साधु सन्यासी सारियां दी प्रीख्या ले सारियां पासियां तो नाराज होके हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साध संगत ते अपनी निगाह टिकाई।

मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मेनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया ने गुरु साहिबां नू अमृत छकाया, ते हुण गुरु साहिबां दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह, ते दूर सारियों एक साध उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जड़ा आपे गुरु बनिया, ते आपे चेला बनिया, एक नवा राह दुनिया नू दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकता है, ते चेला हमेशा चेला, कहन लगे नहीं। जदों खालसा साजे फिर ये क्या कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। साध संगत हुण इक विचार है कि गुरु साहिबां ने उन्हां पंजां नूं नाम दिते, दया राम नूं दया सिंह, सिंह नाम उदों दिता जदों उन्हां अमृत छकिया। ते जे कोई बगैर अमृत छके सिख परिवार विच जन्म लै के अपने नाम दे नाल सिंह लफज लांदा है, उह सिंह लफज माता पिता दा दिता हो सकदा है, गुरु वालों सिंह लफज उदों मिलेगा जदों आपां अमृत छकां। गुरु ने किन्नी कृपा कीती, ना समुंदर रिड़कण दी लोड़ है, ना अवतार बनन दी, ते गुरु नानक वर्गा कोई हो नहीं सकदा कि जिन्हों सचखंड अकाल पुरख बुला के अमृत प्यावे। किन्नी कृपा कीती, रहत बैत वाले पांच सिंघां कोल जाओ, बेनती करो, वो अमृत तैयार करके पाई तुहानू छका देणगे। तो जिन्हें अमृत नहीं छकिया सिख परिवार विच जन्म लैके, उहदा जीवन किसे लेखे नहीं, ते अमृत जिहड़ा छक लैंदा है उहदी कोई जात नहीं। अगर एक चमार भी अमृत छक लवे, रहत विच रवे, ते गुरु साहिब जी कहिंदे ने ओह फिर चमार नहीं,

ब्रह्मांड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोसे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमृतचा दीवान सच्चा तेरा उपसचा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा है सब दान सच्चा है सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सगुना सोभ करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा पावे कार एक होंदा खाए चले हैं अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे हैं सुख है जाने तिलक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार।

तीर रोग है दारू थी इस माह है कृपा करे जी अपनी गुर का शब्द माँ है नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सिंह की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला।

सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से के पौड़ी तुर कर जरा को तुर पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता कर उसके सुनाई तुर वेखी जग तू आया इकरा।

आपे ही करम कराएगा वडो वडा वड़ में तुरी सिरे सिर तंदे लाएगा नदर पठी जे करे सुल्ताना का कराएगा करम।

आसर तीर्थे नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते बड़े संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी माय सचे नाम दरबार ऊपर खर्च मंगा जब दे ता काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीर छुटे नानका ज्यों तेल पौड़ी आप ही करना क्यों करा पे ही तय धारिये देख ही तय अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके

एक रही चाकरी जित पोगस न जाए नानक सेल कांडी है जे सेती ही खसु समाए बोड़ी नानक अंतरा जापनी हर ताके पारा बारे अपराय साथी।